0: अज मेरे बेटे की पहली बर्थडे पार्टी है, दिल खोल के खर्चा किया है।
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे की RESP करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई, RESP तो बच्चे की सुरक्षित भविष्य की चाबी है। आज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नु कॉल करके RESP करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट प्लान।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं पता तो सही सारे की ये कविता बहुत अच्छी लगी है क्योंकि यह है बड़ी अच्छी बड़ी मीनिंगफुल है। पर इस कविता के माध्यम कला मैं स्नेहा देना चाहनी हाँ साढ़े पढ़े लिखे समाज जो अज भी कुड़ियों ते मुड़े च भेद करते हैं। अज भी अगर उन्हें पता लगी हाँ कि ये कुड़ी होने वाली है तो मिनट नहीं लाते उसी खत्म करने च। अज भी कोई ना कोई टब्बर ऐसा है जिथे अज भी मत्थे टेके जाते हैं कि कुड़ी नहीं हो तो मुड़ा हो। अज बड़ी तरक्की भी हो गई है तो बड़े सारे परिवार एक एग्जाम्पल भी सैट करते हैं उन्हें कुड़ियों के जमने पर बड़ी खुशी मनाई जाती है बड़े अच्छे तरीके कन्नी सैलीब्रेट करिए समाज ही सनेहा भी देंगे दें। पर फिर भी बिलीव मी अजे भी हुए ने लोग हैं जो पढ़े लिखे दिन पर फिर भी कुड़ियों तो मुड़ियों च भेद करते हैं तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनके घर मुड़ा के जम्मे कुड़ी नहीं हो।

रेडियो सुनदा परतियै स्वागत है। ते मैं गल करा दी ही तिया ते मुड़े झोने वाले भेदभाव च जो अज भी कुदे ना कुदे भारतीय संस्कृति च है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अज के जमाने च वह नया कोई खेत्र नहीं रहा जिथे कुड़ियां अपना परचम नहीं लहराया। से भी फील्ड चुको तो उत्थे तुसीं कोई ना कोई कुड़ी कोई ना कोई थी जरूर लभी आनी है, अपना वो जेड़ा लोहा मनवा दी होनी है। वो भाए आर्मी है, पुलिस है, डॉक्टर है, हर सैक्टर च टीचर हैं, हर सैक्टर च कुड़ियां अपना परचम लहराए दा है। फिर भी सारा एक समाज है वो बड़ा गे घटिया सोच रखते हैं, तो अज भी प्रार्थना करते हैं कि कुड़ी नहीं हुई आ मुड़ा हुई आ। वो पिछे उन्दे बड़े गे एक्सक्यूज ने लटन पटन कि भाई बंश कौन चलाग, असी कोई गति नहीं देग, क्योंकि अज भी समाज यही मनिया जाता है कि अगर कोई घर का बंदा मरदा है तो उसी गति ती थी है कि अगर वह मुड़ा अगर उसी अग्नि दे। ये गलती ठीक है, जो भी साढ़े हैं मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहनी हाँ, पर एदा ये मतलब तो नहीं है कि अस कुड़ियों का तिरस्कार करचै। एक गति आस्ते अस उन्हें इस समाज च आने को पहले के मारी दिचै। तो मैं सुनिया चाहनी हाँ इस पोएम के माध्यम तुंदे कोल पुजे।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, अस गल करा दे हे दुर्गा प्रदेश दी धीएं दी, धीएं ते मुड़े झोने आले भेदभाव दी। मैं आ तुंदी आरजे डोगरे दी धी नी। हाँ, मेरा ट्विटर अकाउंट है डोगरन सोल करने, तुस उत्थे मैं फॉलो करी सकते हो। ते अगर अज दी धीआं अगर झांसी दी रानियां ते ओह सती ते सवित्री दा भी किरदार हन, हर तरह दा एक मल्टी रोल प्ले करदे हन अज दीआं धीआं। ते मैं तां गई इस रेडियो दे माध्यम तुंदे सारे कोला फिर रिक्वेस्ट करना चाहनी हां कि कुड़े ते मुड़े च बिल्कुल भेदभाव बंद करिए, उन्हें बराबर दा दर्जा देइए। ते उन्हें तुस ये मेरा स्नेहा अगे भी शेयर सारे जरूर करियो। ते हुण मैं इजाजत दियो, मेरे जाने दा टाइम होई है, फिर मैं परतिए मिलगी तुंदे कन्ने एक नवी और कोई पेशकश दे कन्ने। बाय बाय।

0: डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दी बनी का गल
1: होए शम्मी पठल होरा नाल हो गई गल कार लेके देण तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल
0: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल तुहाडीआं लोड़ां मुताबक वधिया लोकेशन ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल आज ही कॉल करो 416 917 7763 416 9

0: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए ओई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: save on energy.ca/EAP

0: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
2: आज दे समय विच हर मापे दी एहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अग्गे होवे ते अपनियां जड़ां अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाने लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल गोबिंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवी लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट जेके तो ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 905-458-6222
3: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वे कोई यूज ट्रक ही लै लवां पर समझ नहीं आउंदी वे कित्थों लवां
4: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेख नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
5: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416 8196 0

0: सजावट इन पूजा घाट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
1: इंडिया सजावट एंड पूजा घाट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
2: लो जी, ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी तुसी पहुंचना है। बहुत ज्यादा वधिया, तुसी टीवी लेने आ, वॉशिंग मशीना लेने आ, ड्रायर लेने आ, 220 का समान लेना है, वड्डे वड्डे टेलीविजन पहुंचे आ, सुल्तान जी दे स्टोर दे 98 इंच दे टेलीविजन, बई वाह, सैमसंग ब्रांड दे आ, रेट बड़ा घट आ। जे तुसी भी ये टीवी लेना चाहते हैं तो तुहाडे वास्ते नंबर हाजिर है, 905-450-2828 दे कॉक दी आ सकदी है, 905-450-2828 दे कॉल भी की जा सकती है। हसीब शेख साहब तुहाडे वास्ते हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टीज ही लैके आउंदे आ, और हसीब शेख साहब दे कोल तुहाडे वास्ते बहुत ज्यादा वधिया कमर्शियल प्रॉपर्टीज हुंदियां। और जे तुसी भी कोई रेस्टोरेंट लेना है, कोई गैस स्टेशन लेना है नेड़े तोड़े, कोई तुहाडे वास्ते स्पैशल डीलां कब लभ के लैके आउंदे आ हसीब शेख साहब, 647-988-4449 दे कॉक दी जा सकती है, 647-988-4449 दे कॉक दी जा सकती है। हसीब शेख साहब नूं तुसी कॉल जल्दी जल्दी जल्दी भी कर सकदे हो। प्रोग्राम पंजाबी विरसा, एक हिंदी दा गीत अज हिंदी दा चल रहा गलबात, ते मैं एक हिंदी दा गीत होर कढ़िया, और ये गीत भी सुन के यार तुसी कहना क्या कमाल दा गीत है। सुनो गीत जरा ध्यान, उस तो बाद फिर वापस आने करदे हां तुहाडे नाल गलबात, होर भी कोई ना कोई।

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80.
2: 98.
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है 12x30 feet दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है पीछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222 bye bye

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरा होगा। साडी कोशिश रहेगी कि 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निज साहब प्रोग्राम पेश करनगे वतनों दूर, सो स्टूडियो नाल जुड़े रहना। साडे स्टूडियो दे जिहड़े नंबर आ 2 बजे तक यही रहणगे 905-799-0999-799-0999।

0: खरीदी तक गाले को जोरे तो माँ भैया जे चारे पासे तुसी भी आओ 1850 Albion Road in Rexdale 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मैंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मैंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मैंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper tusi cheap flight tickets si pal de vichu Toronto to Delhi Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar
5: mitran de junction te
6: ho kede junction te
7: ikka junction brampton te
5: raat lagiyan mehfilana re
7: oi mehfilan te roz hi lagdiyan ne ikka junction brampton te ikka junction brampton te aao taza swadla khao te 100% di capacity wale shandar banquet hall vich apniyan khushiyan de jashn manao ikka junction brampton karde ne catering big or small with live food truck 11 a.m. to 6 p.m. all drinks 50% off ikka junction brampton te call karo 647-429-4040 ikka junction brampton
8: ek life hai jisse love
9: ये कहते मुझसे सब है
10: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: अपने नजदीकी स्टोर ते जाओ या पिज्जा डिपू डॉट सी ए ते ऑर्डर करो।
1: जे तुसी बिजनेस करना है तो फ्रेंचाइजी एट पिज्जा डिपू डॉट सी ए ते आज ही अप्लाई करो। पिज्जा डिपू, स्वाद की चॉप, टॉपिंग्स नॉनस्टॉप।
2: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ थोड़ा अपना साहिब सिंह सैजरा, ऑटो होम एंड लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर। फॉर ऑटो होम या कमर्शियल इंश्योरेंस की कोट ली असी डील करते हैं मोर दैन 15 इंश्योरेंस कंपनीज ना, तो अज ही कॉल करो 6472411309-6472413-0। जेकर तुसी TFSA, RRSP या RESP या SIP खुलवाना चाहते हैं या फिर बिजनेस ओनर आ अपनी रिटेन अर्निंग्स नू स्ट्रैटेजिकली राइटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आमी कॉल करो 6472411309 6472411309।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: लिसन लाइव वचनो दो रेडियो विद सुखी निचर।
6: जी दोस्तों, वतन दूर दे विच आप सब दा निघा स्वागत है। 5:30 AM दे उत्ते तुसी इस टाइम वतन दूर दे हिस्से दे नाल जुड़ चुके हो, और हुणे हुणे तुसी देव तातला जी दे नाल जुड़े हुए सी, गल्लां बातां सुनियां, न्यूज़ वगैरह उन्होंने थोड़े तक साझियां कीतियां। बाहर दा मौसम भी बड़ा चंगा है, और इंजॉय करो क्योंकि आलमोस्ट ए वीक है जिहड़ा काफी तुहानूं लगेगा छुट्टियां वाला माहौल जिहा, क्योंकि मौसम भी वधिया है ते नाल लॉन्ग वीकेंड भी है, सारा कुछ तो इसे वीक दे विच ही है थोड़े लिए। और लो फिर अज दे प्रोग्राम जिथे कुछ खबरां दे उत्ते गलबात करांगे, नाल दी नाल साडे स्पॉन्सर दे संदेश होणगे, ते अज वधिया वधिया गीत संगीत भी थोड़े लिए लभ के लैके आंदा। तुसी कोई गीत सुनना चाहुंदे हो 9057990999 ते कॉल कर सकदे हो। 9057990999 दे उत्ते इंतजार कर रहे हां जी थोड़ी कॉल दी। ते लो फिर शुरुआत करदे हां इक प्यारे जे गीत नाल।

0: 32, 55, 80, 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
4: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.

0: For advertisements and information,
1: साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551
2: स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लेने लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ TV ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.